कसम कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कम हर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम कहीं ज्यादा कहीं कम।

तेरी मंजिल की, वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, दिल में की रात है।

0: बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है।
1: सीता वनवासिनी मंगल मनाए, सीता वनवासिनी मंगल मनाए, फूलों

0: राम के मन में सीता का ध्यान, प्राणों की आरती, प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
1: आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है। आज राम जन्म की बधाई।